0: आशिके आशिके वही चिची चिची रेडियो। हाँ जी 1674 दा थोड़ा स्वागत है। समा हो चुका जी, हाँ जी मेलबर्न दे ओ वाले टाइम दा जिसका सारे नु बहुत ज्यादा इंतजार रहा है, क्योंकि अज है जी फ्राइडे। एंड फ्राइडे दा हुंदा जी थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, एंड थैंक गॉड इट्स फ्राइडे बिकॉज इट इज खुला अखाड़ा विद कृष्णा एंड नोनिया जी। डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग वाह थैंक यू। मैं थोड़ी खांसी करना रुको।
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हां जी 1674 AM। जी हां तुसी सुन रहे हो रेडियो हां जी, और आज फ्राइडे, फ्राइडे दा दिन यानी के मस्तियां मस्तियां खरमस्तियां एंड डबल खरमस्तियां दा दिन, जिस दिन च असी सिर्फ और सिर्फ मस्ती मनाने, क्योंकि पूरा हफ्ता जिहड़ा असी स्ट्रेस लैके जिहड़ा असी इन्ना सारा काम करके थक पिक चुके हुंदे आ ना, ओनू वीकेंड नू लुक फॉरवर्ड करदे हुंदे आ असी, लुक फॉरवर्ड करन नू असी मनाउने हुंदे आ उस दिन नू। मनाउणा मनाउणा किद्दां हुंदा है? मनाउणा हुंदा सिर्फ और सिर्फ मस्ती दे विच। और मस्ती दे विच की हुंदा कि असी ना कुछ रूल लिखे हुंदे ने जदों छोटे हुंदे आ ना, उदों कुछ असी रूल लिखदे आ।
0: वाह,
1: और रूलां नू असी कदे कदे फिर भुल जाने आ जिंदगी च, इन्ने के बिजी हो जाने ना। कहंदे ना कि जिद्दां हर चीज का एक पासवर्ड है,
0: रूल तोड़ने के लिए होते हैं नोनिया जानी।
1: सुने सुने सुने सुने जानी, आगे आगे आगे भी सुने, आगे भी सुने।
0: सॉरी सॉरी, माजरत माजरत।
1: नो नो नो, इट्स ओके, परफेक्टली ऑलराइट जानी।
0: ये
1: हर चीज का एक पासवर्ड है।
0: ओह वाह,
1: ऑलराइट। फोन का, बैंक का, ईमेल का।
0: वाह वाह,
1: तेरे भाई का बदला लेगा। रिमेम्बर बाबा का, अच्छा, दादा का,
0: बाप का, दादा का। वो बड़ा बढ़िया, ए बुढ़िया चुप कर जा।
1: हर चीज का एक पासवर्ड है, फोन का, बैंक का, बैंक का, ईमेल का। हमने सब याद रखे हैं,
0: सब याद रखे हैं, सब
1: हमने सब याद रखे हैं, बस पुराना पासवर्ड भूल गए।
0: वाह,
1: बस पुराना पासवर्ड भूल गए। हाँ। जिस पे कभी हमने लिखा था जो मन करेगा वही करेंगे।
0: ओए होए होए होए होए।
1: Alright, so आज जेड़ा फ्राइडे है ना, we will celebrate.
0: Yes.
1: Always, not today only, always we celebrate that Friday.
0: Yes.
1: ताकि जो भी असी कह रहे थे मन करूंगा असी करांगे। सो उदे च मन करने च की आजूगा कि तुसी गाने सुना सकते हो, तुसी चुटकले सुना सकते हो, तुसी अपनी आप बीती सुना सकते हो, हफ्ते दे विच केड़ी बहुत सॉरी घटना बहुत बढ़िया थोड़े नाल हैपनिंग हुई है तुसी ओह सुना सकते हो, तुसी कुछ भी सुना सकते हो। पर कंडीशन सिर्फ एक ही है कि ओही सुनियो सुनायो जो असी घर परिवार दे विच बह के सुन सकीए सुना सकीए, जिथे सानू ए ना कहना पवे कि न्याणियां दे कन्नां ते हथ रखो या रेडियो बंद करो, इवें दी कंडीशन ना होवे
0: बिल्कुल,
1: जिस नाल किसी दा दिल ना दुखे, किसी दीआं भावनावां नू ठेस ना पहुंचे। बस इन्नी की कंडीशन, होर कोई बहुत ही है नहीं है।

0: के थोड़ी तरक्की दिरानू पूर्वी सोखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431 465 186 ते 212216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस

0: चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाडे नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तो हाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तो हाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au। की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशन। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596। गरेवाल वीजा solutions.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
1: Attention, ladies and gentlemen, this is your captain. 30 flights, Melbourne to India या Pakistan, Sydney to India या Pakistan कितने भी जा सकती है।
0: Attention, please. दिल कहता है कार जाना है, फ्लाइट सर्च करके थक गए। स्विच करो Hi-Fi Travel से, your local travel agency. Rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book करनी है? आज ही call करो 1300-533-311 ते या online book करो hi-fi-travels.com.au ते।
2: मैंनु अपनी नवी दुकान ली premium 3D illuminated sign दी urgent load सी। Quick signage ने in-house design, printing ते professional installation सिर्फ 4 तो 5 दिना विच पूरी कर दित्ती। Glowing shop front तो vehicle wraps तक, brand पूरी street विच सब तो वख चमक उठ्या। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 साला तो साइनेज लीडर्स। अपनी बिजनेस नु चमकाओ, कॉल 1300-151616, quicksignage.com.au।

0: सोना चाहिदा,
1: परोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042। किचन द स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।
2: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहुंदे हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वो भी वधिया रेटां ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवें वाले दिनां च भी तुहाडे अपणियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
3: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नू आगे बढ़ाना है, ता टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना, होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर, वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2Fold Lending।

0: रेडियो हाँ जी 1674 एम दे उत्ते तुहाडा सारयां दा स्वागत जी। मैं गौतम कपिल और प्रोग्राम एक देश पंजाब की गल कीते प्रीतम सिंह रूपाल भाजी होरां दे नाल करदे हां। 19वीं सदी दा जिहड़ा मध सी उह भारत जदों गुलामी दीआं बेड़ियां दे विच जकड़िया होया सी, बरतानवी बस्तीवाद सी, बहुत थोड़े जे हिस्से च पुर्तगाली या फ्रांसीसी बस्तीवाद भी सी। सो मुकदी गल इह कि एशिया दे ज़्यादातर देशां दे विच कलोनाइजेशन दा जिहड़ा दौर चल रहा सी। अफ्रीका दे जिहड़े मुल्क सीगे अफ्रीकी मुल्कां दे विच वी सी और अफ्रीकी मुल्कां दे विच उत्थों दा जिहड़ा समाजक पतन हो रहा सी। अफ्रीका दे लोग जिहड़े सी उत्थों दीआं स्थानक भाषावां छड्ड के अपने धर्म छड्ड के अपनियां बोलियां छड्ड के बरतानवी ते फ्रांसीसी ते पुर्तगाली समाज दे विच रचदे मिलदे जा रहे सी और जिहदे असर अज दी तरीक च असीं देखदे वी आं। जे ज़्यादातर अफ्रीकी मुल्कां च तुसीं जाओगे उन्हां दीआं अपनियां स्थानक भाषावां तां हैगीआं ने पर फिर भी उह ज़्यादातर कैथोलिक धर्म नूं मन्नदे ने ते अंग्रेजी बोलदे ने। भारत दे विच इस किस्म दे नाल किते ना हो जावे इस करके उस दौर दे विच बहुत सारियां लहरां चलियां सी। ब्रह्म समाजी लहर होगी, आर्या समाजी लहर होगी ते पंजाब वाले पासे सिंह सभा लहर भी एक ऐसे किस्म दी लहर सी कि अपना सभ्याचार अपना जिहड़ा विरसा उस नूं किते गवा ना दिता जावे, अपनी धर्म दी होंद ना खो जावे, अपनी भाषा दी होंद ना खो जावे। वैसे क्यों इहदे ते गल कर रहे हैगे उहदा जिहड़ा पूरा दा पूरा संधारा वह प्रीतम सिंह रूपाल भाजी सानू दसनगे, साडे नाल फोन लाइन दे उत्ते मौजूद हैगे ने। भाई सत श्री अकाल जी। जी आयां नूं
1: सत श्री अकाल गौतम जी, मेरे वल्लों सारे श्रोतां नूं भी सत श्री अकाल
0: जी। अज सिंह सभा लहर दी गल करनी हैगी है ते वजह की है इहदी ते किस तरीके दे नाल तुसीं इस इहदी सिंह सभा लहर है जिहड़ी इहदी अहमियत समझा सकदे हो पंजाब दे संदर्भ च भारत दे संदर्भ दे विच और किद्दां इहनां ने जिहड़ी आपां जिवें मन के चलदे हैगे आ कि पंजाब दे विच बहुत सारियां लहरां जिहड़ियां ने अलग अलग तरीके दियां चलियां हैगियां ने पर इह उहनां दे विचों सब तो मोढ़ी और सब तो अहम क्यों मनी जांदी है ते इहदे नाल जिहड़ी अज दे तरीक दी पंजाब दी होंद हैगी उह कहा जांदा है कि काफ़ी हद तक बची रह गई है। चलो खैर उह असीं अपने हत्थां नाल खराब कर रहे हैं पर उहदी भी वजह की है।
1: असल दे विच गौतम जी जिहड़ी सिंह सभा मूवमेंट है जां सिंह सभा लहर है कई तत्काली कारण बने यह लहर शुरू होने दे विच। आपां गल अज तां कर रहे हैं क्योंकि अज पहली अक्तूबर है ते अज तो ठीक आपां कह सकते हैं कि 153 साल पहला जिहड़ी है 1873 दे विच जिहड़ी है सिंह सभा लहर जिहड़ी है यह शुरू हुई सी। सिंह सभा की स्थापना हुई सी अमृतसर दे विच ते जिहड़ा बाकी सारा एक माहौल है जो चलदा रहा समय समय जां हुण तक जिथे पहुंचा है एक सिक्खी पहुंची है जां पंजाब पहुंचा है ते इहदे विच मैं समझदा कि इस मूवमेंट दा इस लहर दा बहुत वड्डा जिहड़ा हैगा वह योगदान है ते उहदे कई कारण। वैसे तुसीं जिहड़ी भूमिका बड़ी वधिया तुसीं बन्नी है कि तत्काली कारण की बने ते क्योंकि जदों बस्तीवाद ने अपना असर दिखाउणा शुरू किया क्योंकि बस्तीवाद की शुरुआत तो व्यापार तो होंदी है ते जदों थां थां ते जिहड़ियां बरतानवी कंपनियां जांदियां ने ते फिर हौली हौली बरतानवी व्यापारियां तो बाद फिर उन्हां दे मिशनरी जांदे ने फिर उन्हां दीआं फौजां जांदियां ने उन्हां दी पुलिस जांदी है ते इक इदां दा इक तरीका सी उन्हां दा पूरी दुनिया दे उपर राज करन दा ते इत्थे भी इस तरह वापर है ते हालांकि पंजाब दे विच जिहड़ी है ईस्ट इंडिया कंपनी दे आउण तो बाद पूरे 100 साल बाद जिहड़ा है वह फिरंगी आए जां आपां कह सकदे हां कि बरतानवी हुकूमत दा हिस्सा बनिया जां पंजाब दी आपां एनेक्सेशन कहने आ वह होई रलेवा होया बहुत सारियां गल्लां ते जिस तरह होरना थावां ते जिहड़ा है मिशनरियां ने रंग दिखाउणे शुरू कीते बाकी आपां गल छड्ड दिंदे हां इतिहास बहुत लंबा है

0: ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555 गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।
1: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड डायमंड बुलियन सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन। हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग।
2: ऑस्ट्रेलिया
3: च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2Fold लेंडिंग।
4: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
5: किचन का स्टाइल डल लगता, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टे करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
6: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
7: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
6: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
7: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
8: Attention ladies and gentlemen, this is your captain. 30 flights Melbourne to India ya Pakistan, Sydney to India ya Pakistan kithe bhi ja sakti hai.
4: Attention please, dil kehta hai kar jana hai, flight search karke thak gaye, switch karo Hi-Fi Travel Stay, your local travel agency rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book karni hai? Aaj hi call karo 1300-533-311 te ya online book karo hi-fitravels.com.au te.

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसीं एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। आओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: सोना चाहिदा,
2: भरोसा चाहिदा,
1: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक। कॉल 0493-536-042।
3: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
0: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिना को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
1: हम थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
4: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
5: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
6: की होया,
5: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
6: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चक्को, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नु, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
5: या 90-77-97-33
6: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
5: याद रखो 9077-9733।
6: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
5: हर कदम तुहाडे नाल।
1: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
7: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
8: हां जी रेडियो

0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तो हाडे ले कर देने बंसल लॉयर्स। तो हाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमिग्रेशन वालिया दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
1: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
3: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
1: फिर लवाइए कित्थों?
3: सन करंट वालिया कोलों। 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
1: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
4: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
5: हां जी रेडियो।
1: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लौना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
6: ऑन रोड्स ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय ले। हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल। BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990, BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990 ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900। एक खास ऑफर 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करने वाले लिए है। डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक। हो जानकारी ले आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी। BYD ऑन roads on us, conditions apply.
7: Attention ladies and gentlemen, this is your captain. 30 flights Melbourne to India ya Pakistan, Sydney to India ya Pakistan kithe bhi ja sakti hai.
1: Attention please, dil kehta hai kar jana hai, flight search karke thak gaye, switch karo Hi-Fi Travel se, your local travel agency rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book karni hai? Aaj hi call karo 1300-533-311 te ya online book karo hifitravels.com.au te.
8: Wow, teri sabji de khushbu ate taste vich kuch ta kamal hai. Mainu vi dasde hai secret.
9: Amrit, eh kamal hai Gold Leaf Dairy de pure New Zealand tea da. New Zealand vich free range grass fed gawan de dudh to taiyar. Na ta is vich oil, na hi koi color, hormones ya antibiotics. Bilkul प्योर है कि प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
8: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाई बैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: टेंशन मेरी टेंशन
3: की होया,
2: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
3: काका जी टेंशन छड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, इम्प्लॉयर स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
2: या 90-77-93
3: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
2: याद रखो 9077-9733।
3: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
2: हर कदम तुहाडे नाल।
4: विक्टोरिया वासियों, क्या आपको गैस पर खाना बनाना पसंद है? कड़ाके की ठंड वाली रात में तुरंत गर्म हो जाने वाला घर, जब भी आपको जरूरत हो पूरे परिवार के लिए लगातार मिलने वाला गर्म पानी, तो जब तक आप इसका आनंद ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि स्टेट लेबर इन सब पर बैन लगाने की योजना बना रही है। बैन केरल से कहिए कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको बताए कि आपको अपने ही घर में खाना कैसे बनाना है, घर गर्म कैसे रखना है या नहाना कैसे है, पर जाकर गैस सब्स्टिट्यूशन रोड मैप को नहीं कहें। डेविड डेविस MP द्वारा अधिकृत सदर मेट्रोपॉलिटन रीजन के सदस्य, लेवल 1-670 चैपल स्ट्रीट साउथ 11, davidavis.com।
0: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तों ऑलवेज वन स्टॉप शॉप, टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390-8-6655 और विजिट tireforce.com.au।
5: ओ देखो हो गया, फिर खेल हो गया शुरू, देखो कि...

0: इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया। की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन का, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: अक्षरा जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना जाओ इधर उधर सीधे आओ आईएमई एडवाइजर अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नु नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491 स्किल असेसमेंट पार्टनर वीजा पेरेंट वीजा जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ली एक्सपर्ट गाइडेंस आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर कॉल 02-9063-1618 और पैरामेटा सिडनी अति न्यू दिल्ली विच भी आईएमई एडवाइजर।
2: हाय मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 एएम और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 एएम। थैंक यू।

0: वाह वाह वाह, क्या बात है। जत्थों मैं लंगा उत्ते खाली राह नखरो,
1: इको फोन उत्ते भजे दे।
0: वाह क्या बात है। एक मेंटल हेल्थ पेशेंट ले भी लोग किस तरह ही करते कि यार माड़ा राह छड़ दो, पता नहीं की करे की ना करे। मैनू गाइस जोक्स हो रहा जी, एनी ओजला फैंस इन द हाउस, असी भी फैन है जी, फैन है जी, फैन है जी, फैन है जी। तो यह थानू एक होर आप गाना सुनाता जी ओजले की नवी ईपी का। तो अज असी गलबात जी करांगे साडे विशेषज्ञ बलकीरत दे नाल।
1: What's that, bro?
0: गलबात यह कि मैं पढ़ रहा सीगा जी एक रिपोर्ट, ओदे ते आपां थोड़ा जिहा पिछले हफ्ते कीता सीगा हांजी मेलबर्न ते गलबात।
1: हांजी कीड़ी रिपोर्ट पढ़दी थी?
0: ओ सीगी हिलडा दी रिपोर्ट। उस तो बाद जी आरबीए वाला जिहड़ा कांड होया सारयां नूं पता है जी, इंटरेस्ट रेट वध गए। ठीक है जी। फिर जी अज जो पेनू करते पे रिकॉर्ड, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सरचार्ज ऑन योर एफ्ट पॉस एंड मास्टर वीज़ा कार्ड यूज़ करन ते ओह बंद कर दिते ने एंथनी अल्बनीज़ी की सरकार ने। ये भी सबनू पता, पर ओदा खामियाजा यह होएगा कि शायद जिस चीज़ का तुसी लेट सपोज जो तुसी उस कॉफ़ी का जिदा 5-60, 5-70 दे रहे थे, हुण ओह 6.5-7 की सीधे मालक नूं करनी पई, क्योंकि स्मॉल बिजनेस नूं ये खर्चा आप बेयर करना पैना है। सो यह सब चीज़ों के मुद्दे नज़र एंड हिलडा की रिपोर्ट भी जी उस बारे भी दस दिए कि ऑस्ट्रेलियन लोग जो 18-29 की उम्र च ने, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की बनाई हुई रिपोर्ट है हाउस होल्ड इनकम लेबर डायनामिक्स नाम तो, उदे अंदर 50% तकरीबन 50% यंग अडल्ट्स जिहड़े 18-29 साल दे ने, ओह कह रहे ने कि असीं अपने पेरेंट्स नाल मूव इन करना चाहुंदे हां, या फिर असीं अपने पेरेंट्स नाल मूव इन कर चुके हैं क्योंकि घर नहीं खरीद हो रहा, रेंट नहीं पे कर हो रहा। सो असीं सोचा जी कि बई आपां गल इह करदे हां कि खर्चा वध गया, खर्चा वध गया, खर्चा वध गया। आपां अज इहदा जिहड़ा दूसरा पहलू है कि कमाई किस तरह वधाई जा सके, या फिर लोग कमाई किस तरह वधा सकते हैं, या फिर लोग किस तरह कमाइया वधाते हैं, उस बारे गल करेंगे। एंड यह जी टॉक है ये कोई सजेशन बेस्ड नहीं, ये ओपीनियन बेस्ड नहीं, ये ऑब्जरवेशन बेस्ड है। मतलब जो आप गल्लां बातें करांगे ओह यही नहीं कह रहे थानू कि यह करो, ये नहीं कह रहे कि आह

और वैलिड बना दें। ये भड़काऊ जिहड़ी राजनीति है या भ्रम पैदा करने वाली राजनीति है, ये खत्म होनी चाहिए है। चोणा स्वतंत्र ते निरपक्ष दोए तरीके दे नाल होनिया चाहिए। उन्हें कहा कि हो सकता है कि तुसी चोणा लड़दे रहो, पर सानू डर यह है कि तुसी अजिहा नहीं करोगे क्योंकि तुहाडी होंद खत्म हो जाएगी। जदों वोटां चोरी हो रही होण, विधायक पासा पलट रहे होण, पार्टियां दे विच फुट पाई जा रही होवे, तां इस तरीके दे नाल तुहानू राजनीति का दूसरा तरीका दिखाना चाहिए। सियासी होंद तो सियासी होंद खत्म ना हो जाए, इस डर तो दूर जाना चाहिए। बस तुसी ऐसी व्यवस्था दे विच बने हुए हो जिथे चोणां दी धांधली की गलता हो सकती है, चोणां तुहाडे लई महत्वपूर्ण भी ने, पर बाकी थावां दे उत्ते चुप हो जांदे हो। असल दे विच लंघी कल कांग्रेस दे नेता राहुल गांधी दी तरफ तों इसे सवाल दे जवाब दे उत्ते पासा पलटिया गया। जदों राहुल गांधी ने इस मामले नूं लैके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंडियन एक्सप्रेस दे पत्रकार दी तरफ तों उन्हां तों सवाल भी पुछया गया कि जेकर चोणां दे विच धांधलियां हो रही ने तां विरोधी धिर दे तौर दे उत्ते कांग्रेस दी अगलियां चोणां दे विच रणनीति की रहेगी। हालांकि राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि वह चोणां दे विच हिस्सा नहीं लैणगे, पर वह ज्ञानेश कुमार दे अस्तीफे की मांग जरूर करते रहे। कांग्रेस नेता पूरे देश दे विच चोणां नूं लैके चोण कमिश्नर दे दफ्तरां दे उत्ते मार्च कढ़णगे। पार्टी ने ज्ञानेश कुमार दे लई सारे फैसलियां ते वोटर लिस्टां दे विच बदलावां दी इक सुतंत्र समीक्षा की मांग की है। दस दईए कि इस दरम्यान लगातार ये गलबात चल रही है कि ज्ञानेश कुमार का अस्तीफा किया जाना चाहिए, और अज के दिन कांग्रेस की तरफ तो देश भर के इस किस्म के रोस मुजहरे किए जाएंगे। रोस मुजहरिया के नाल ही जुड़ी अगली खबर भी है, UPI लेन देन के उत्ते प्रस्तावित जिहड़ी व्यापारी छोड़दार है यानी MDR है, उसके विरुद्ध देश भर के व्यापारक संगठनों की तरफ तो विरोध तेज हो गए हैं। फैडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल यानी FAIVM कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर सने कई सारिया व्यापारक जथेबंदियां ने 2 अक्तूबर गांधी जयंती के मौके के उत्ते नो UPI दिवस का ऐलान किया है, यानी UPI के राही भुगतान नहीं किए जाएंगे, सिर्फ नकदी के लिए ही ग्राहकों उत्साहित किया जाएगा या फिर कार्ड के नाल भुगतान के विकल्प जिहड़े उन्होंने उत्ते विचार किया जा सकता है। महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एग्रीकल्चर एसोसीएशन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर फैडरेशन ते ऑल इंडिया एडिबल ऑयल ट्रेडर्स फैडरेशन तो इलावा और बहुत सारिया संस्थावां ने 2 अक्तूबर की इस सांझी बाइकाट के शामिल होने का सद्दा दिता है। मनिया जा रहा है कि 500 के करीब व्यापारक संगठन भारत भर के सरकार के इस प्रस्तावित फैसले के खिलाफ अपना इतराज़ दर्ज करवाएंगे। इस तो पहला भी 23 सितंबर 125 व्यापारक संगठनों ने मध्य प्रदेश के बड़े शहर इंदौर जबलपुर ग्वालियर के इस किस्म के प्रदर्शन किए थे, नो UPI डे मनाया गया। महाराष्ट्र के भी चैंबर ऑफ कॉमर्स इस अलावा पेट्रोल पंप डीलर एसोसीएशन वर्गे कई संगठनों ने इस किस्म के प्रदर्शन किए। NPCI के नवे ढांचे के तहत आउंदी 15 अक्तूबर 2026 2000 रुपए तो भी वध दे व्यक्तिगत तो व्यापारी ते व्यापारी तो व्यक्ति तक दे जिहड़े P2M जिन्हों UPI लेन देन कह लिया जाता उन्होंने उत्ते 0.4% MDR लागू करने का प्रस्ताव सरकार ने दिता सी। प्रति लेन देन की वध तो वध 300 रुपए की गल भी रखी गई सी, यानी कि जदों कोई व्यक्ति किसी व्यापारी को भुगतान करेगा तो उस व्यापारी 300 रुपए तक का जिहड़ा टैक्स है वह सरकार नूं देना होएगा, पर यह एक मुश्त रकम दे उत्ते सरकार ने भी कहा कि 2000 रुपए या इस तो घट दी रकम दे उत्ते कोई भी टैक्स जिहड़ा UPI दे नाम दे उत्ते व्यापारियों नूं देन दी लोड़ नहीं होएगी। उधर सुप्रीम कोर्ट ने लंघी कल कर्नाटक सरकार तो तमिलनाडु की उस अपील के उत्ते जवाब मंगया जिस दे विच जल सप्लाई की कमी का हवाला देंदे हुए कावेरी नदी तो उसके हिस्से का पानी छड़न की मांग की गई है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के कहा है कि पानी की कमी के कारण उन्होंने सौनी की फसल पहले ही बर्बाद हो चुकी है। उत्थे कर्नाटक सरकार ने कहा है कि वह भयानक सोके की स्थिति का सामना कर रहे हैं। दस दिए कि मामला जस्टिस विक्रमनाथ जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह जस्टिस संदीप मेहता की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया। मामले के संबंध के तमिलनाडु सरकार वालों पेश हुए वकील ने कहा कि कावेरी जल प्रबंधन अथॉरिटी यानी CWMA पानी की कमी न पूरा करने के हुक्म दिते जाने चाहिए ने। इस दे नाल ही अदालत ने कर्नाटक नूं इह वी कहा है कि तमिलनाडु की अपील के उत्ते 1 हफ्ते के अंदर जवाब तलब करे। इस तो बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अगली तारीख 12 अक्तूबर तक तय कर दी है।
उधर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा है कि ग्रुप 2035 तक पच्छम बंगाल दे विच 1,00,000 करोड़ रुपए तो वध दा निवेश करेगा। गौतम अडानी ने कोलकाता दे नेड़े स्थित न्यू टाउन खेतर दे विच 2,000 बिस्तरियां वाले हस्पताल दा नींह पत्थर रखन तो बाद एक प्रोग्राम नूं संबोधन करदिआं इह गल कही। इस समागम दे विच सूबे दे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद सी। उन्हां कहा कि ग्रुप वल्लों वख-वख मैडिकल सहूलतां दे तहत अडानी आरोग्या मंदर ते 4,000 करोड़ रुपए दे उत्ते खर्च करके एक प्रोजेक्ट नू शुरू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट दे नाल 10,000 लोगों नू रोजगार दे मौके भी पैदा होंगे। उद्योगपति ने भी कहा कि वैसट बंगाल दे विच अडानी ग्रुप का निवेश बंदरगाहां तो लैके लॉजिस्टिक्स बिजली सड़कां दे निर्माण तो डेटा सेंटर दे निर्माण तक किया जाना है। इधर आस्ट्रेलिया दीआं खबरां दी सांझ पाईए जिथे आस्ट्रेलिया दे विच चाइल्ड सेफ्टी ते यूथ जस्टिस अदारियां दे नाल जुड़े हुए वर्कर्स की तरफ तो क्वींसलैंड दे विच अज 2.5 घंटियां दी हड़ताल नौकरी छड्डन वाली हड़ताल जिहड़ी उह कीती गई यानी काम छड्डू हड़ताल। इस दरमियान सैकड़ियां हज़ारां दी गिनती दे विच क्वींसलैंड दे चाइल्ड सेफ्टी वर्कर्स ने सरकार दे उन्हां मंगां नूं लैके जिहदे विच उन्हां दीआं तनखाहां ते काम करन दीआं कंडीशनज शामिल ने उन्हां नूं लैके अज दुपहर वेले इह हड़ताल रखी। दी टुगैदर यूनियन की तरफ तो यह गल कही गई कि सूबाई सरकार दे नाल चाइल्ड सेफ्टी ते यूथ जस्टिस अग्रीमेंट मार्च महीने दे विच हो चुके ने और उस महीने तो बाद लगातार सरकार इस मामले दे उत्ते यूनियन नूं टालदे आ रही है। किसी भी मसले दे उत्ते पहुंचा नहीं जा रहा, किसी हल दे उत्ते पहुंचा नहीं जा रहा। हज़ारां घंटे असी इस काम नूं दे रहे हैं, डिपार्टमेंट की तरफ तो सही ढंग दे नाल तनखाहां तक नहीं दित्तियां जांदियां। चाइल्ड सेफ्टी वर्कर्स की तरफ तो यह गल कही गई है कि आम तौर दे उत्ते यह गल कही जाती है जो कि वर्क सेफ वर्क अग्रीमेंट जिहड़ा तैयार होया सूबाई सरकार ते चाइल्ड सेफ्टी वर्कर्स के दरमियान के हफ्ते दे विच 16 केसिज जिहड़े ने चाइल्ड सेफ्टी दे नाल जुड़े हुए उन्हां दे उत्ते काम किया जाए। पर असल दे विच हफ्ते दे 16 नहीं बल्कि 30 केस भी आ जाते हैं। अजय दे विच बच्चों के नाल जुड़े हुए मामलों का जिहड़ा निपटारा करते हैं जिहड़ा जिहड़े नजिठते हैं वह वर्कर उन्हां दे उत्ते दिमागी बोझ वध है। होर तो होर यह भी कहा जा रहा है कि 100 के करीब चाइल्ड सेफ्टी अलग अलग अफसर जिहड़े ने अलग अलग पोजिशन के उत्ते उन्हां दीआं कुर्सियां ही खाली पईआं ने, उन्हां नियुक्तियां नूं नहीं भरिया जा रहा। इस दे करके जिहड़ा मौजूदा स्टाफ है उन्हां दे उत्ते दबाव पाउंदे है। तनखाह दे घट होण और वर्क कंडीशनज दे बेहतर ना होण दे चलदे इन्हां कामियां दी तरफ तों हड़ताल कम छोड़ू हड़ताल जिहड़ी उह कीती गई। उधर आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने यूनाइटेड नेशन दे प्लेटफॉर्म नूं वरतदिआं होइआं आस्ट्रेलिया दी साल 2029-30 दी सिक्योरिटी कौंसल दी जिहड़ी इक दावेदारी है उसनूं पेश कीता ते नाल ही आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस वर्गे मुद्दिआं दे उत्ते कई सुपर पावर्स नूं घेरिआ बगैर चाइना ते अमरीका दा नां लिआ। दस दिए कि 193 देशों वाली यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र की महासभा के सालाना इजलास नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा कि इस दरमियान यह बेहद जरूरी है कि जिहड़ी सलामती कौंसल है यानी सिक्योरिटी कौंसल है उस दे विच कुछ मुढ़लियां तब्दीलियां होनियां चाहीदियां। एंथनी एल्बनीज ने यह गल कही कि आस्ट्रेलिया गैर परमानेंट जिहड़ी सीट है उसके वास्ते 2 साल के लिए अपने नाँ का सुझाव दिंदा है। साल 2029 ते 2030 के वास्ते आस्ट्रेलिया एक नॉन परमानेंट सीट के वास्ते अपनी दावेदारी पेश कर रहा। हालांकि इस दरमियान उन्होंने सुनेहे के उत्ते कनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी यूरोपीय यूनियन की कमिश्नर उर्सुला वॉन डेर लियोन ते कई होरना नेतावान ने ताड़ियां मार के स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सुपर पावरस नूं इस वक्त लोग कन्नों सुन के अणगौलियां कर रहे हैं, यह जरूरी है कि इन्हां सुपर पावरस नूं एक सुनेहा दिता जाना चाहिए। दस दिए कि एल्बनीज उन्हां 20 देशों के शामिल ने जिहड़े आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस के उत्ते लगाम लगाने के फैसले की वकालत कर रहे हैं, जिहड़े कह रहे हैं कि सारे ही देशों के कोल इसका कंट्रोल होना चाहिए कि भविख के आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस कि अपने कंट्रोल तो बाहर ना निकल जाए। इस करके इस तकनीक के उत्ते कंट्रोल सारे देशों के कोल सुतंत्र रूप के होना चाहिए। हालांकि अमरीका इस किस्म की गल तो इनकार कर रहा है क्योंकि ज़्यादातर AI आधारित कंपनियां अमरीका दे विच ही बसियां होईयां ने। अमरीका इस नूं आमदन दा एक प्रमुख स्रोत मन के चल रहा है, इस करके प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज दे दावे नूं सिरों नकार रहा है। उधर बीती रात भी जदों प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने अपने दावे किते सी तां उस नूं पापुआ न्यू गिनी दे प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने उसकी हमायत की सी ते कहा सी कि ग्लोबल सिटीजन वर्गे वकारी पुरस्कार हासिल करन वेले जदों एंथनी एल्बनीज ऐसे दावे करते हैं तो यह बेहद जरूरी है कि ऐसे नेता की गल नूं सुनिया जाए।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਨੀਜ਼ ਦੇ ਉਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਰੰਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ NSW ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਮੀਆਲੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਦੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ 24 ਸਾਲਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ। ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਦੂਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੀਆਲੇ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਮੀਆਲੇ ਨੇ ਹਾਲੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕ੍ਰਿਸ ਮਿੰਜ਼ ਤੇ NSW ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਯਾਸਮਿਨ ਕੈਥਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਹ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਮਾਣਮਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਾਪੇ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਸੀ, ਤਸੱਲੀਸ਼ੁਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਟੀਮ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਫੁਟੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ CCTV ਫੁਟੇਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟੋਪਰਸ ਦੇ ਨਾਲ 1800-333-0 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟਕੇਲੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੋਕ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ $1,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰਾਂ ਚੱਲਣ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਰਟਨ ਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ $1,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਿੱਜ ਲਟਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟੇ ਹੋਏ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਲਿਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਫਰਿੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਕ ਕੇ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸ $46 ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। $1,600 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ $700 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 3 ਡਿਮੈਰਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਪ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਡੇਂਜਰਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 11 ਸਪਤੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੋਫੈਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 3600 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੈਂਡਮ ਬ੍ਰੈਥ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੈਂਡਮ ਬ੍ਰੈਥ ਟੈਸਟ ਵਾਜਬ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ। 17 ਸਪਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਏ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 97 ਇਨਫਰਿੰਜਮੈਂਟ ਨੋਟਿਸ ਕੁੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 53 ਅਰੈਸਟ ਅਤੇ 68 ਦੋਸ਼ ਵੀ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਚਾਹੇ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਵੇ, NSW ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸੂਬਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਔਕ ਪਾਰਕ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਬਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਸਬਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ, 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 4 ਸਾਲਾ ਗਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀ। 27 ਸਪਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਪਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਸਦੀ ਉਮਰ 4 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਉੱਘ ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਗਸ ਲੈਮੋਂਟ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ $1,000,000 ਦੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟੋਪਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 34 ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ 2 ਈਮੇਲਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਸੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਚਾਹੇ ਗੁਪਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸੂਚਨਾ ਇਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਡਰਟ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ 27 ਸਪਤੰਬਰ ਨੂੰ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁਆਨਤਾ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੁਆਨਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM। ਬਾਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।

0: ऑन रोड ऑनर्स कैंपेन सिर्फ सीमित समय ले हुन नवा BYD कार ले आओ शानदार ड्राइव अवे ऑफर्स दे नाल BYD C-Line 7 प्रीमियम सिर्फ $54,990 BYD C-Line 8 डायनामिक FWD सिर्फ $56,990 ते BYD Shark 6 प्रीमियम सिर्फ $57,900 एक खास ऑफर 1 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक ऑर्डर करने वाले लिए है डिलीवरी 31 अक्टूबर 2026 तक हो जानकारी ले आज ही BYD कैरोलाइन स्प्रिंग्स नाल संपर्क करो एंड मेंशन रेडियो हांजी BYD ऑन रोड ऑनर्स कंडीशन अप्लाई
1: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले याद रखो टायर फोर्स जिना को लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सुमर्टन रोड कैंपलफील्ड कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au
2: ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ Werribee Toyota
3: ਜਿੱਥੇ ਹੈ Toyota ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੈਸਟ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਬੈਸਟ Google ਰਿਵਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ Toyota ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ Werribee Toyota ਦੇ ਨਾਲ
2: ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0431-465-186 ਤੇ 212-216 ਓਲਡ ਜੀ ਲੌਂਗ ਰੋਡ ਹਾਪਰਸ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ Werribee Toyota The Smart Choice.
4: बिजनेस चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने ATO ऑडिट्स टैक्स डिस्प्यूट्स ATO डेट्स बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा आज ही विजिट करो sebipartners.au सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स

0: सुन रहे हो डीजे ब्लास्ट सैटरडे स्पेशल विद योर ओन आरजे पुनीत। एंजॉय करते रहो तो सुनते रहो डीजे ब्लास्ट रेडियो। हां जी ते चकवें गीत सैटरडे नाइट नु होर भी चकवी बनाने वास्ते डीजे ब्लास्ट विद आरजे पुनीत।
1: विक्टोरिया वासियों, क्या आपको गैस पर खाना बनाना पसंद है? कड़ाके की ठंड वाली रात में तुरंत गर्म हो जाने वाला घर, जब भी आपको जरूरत हो पूरे परिवार के लिए लगातार मिलने वाला गर्म पानी, तो जब तक आप इसका आनंद ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि स्टेट लेबर इन सब पर बैन लगाने की योजना बना रही है। बैन केरल से कहिए कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको बताए कि आपको अपने ही घर में खाना कैसे बनाना है, घर गर्म कैसे रखना है या नहाना कैसे है, पर जाकर गैस सब्स्टिट्यूशन रोड मैप को नहीं कहें। डेविड डेविस एमपी द्वारा अधिकृत सदर मेट्रोपॉलिटन रीजन के सदस्य लेवल 1670 चैपल स्ट्रीट साउथ यारा daviddavis.com।
2: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिनों विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालों तो साइनेज लीडर्स। अपनी बिजनेस चमकाओ, कॉल 1300-151616 quicksignage.com.au।
3: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
4: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
3: फिर लवाइए कित्थों?
4: सन करंट वालिया कोलो 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
3: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
5: की चाहिदा? ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लाउणा जां वीजे लई मशवरा चाहिदा? मिल जुगा, सीधे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशन। ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा लई एक भरोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
6: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
7: हां जी रेडियो

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले। जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 डॉनस्टेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।
3: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मैनु भी दस दे सीक्रेट।
4: अमृत, ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दुध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
3: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
5: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 4229058 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: que acho que vai chichi रेडियो हां जी 1674 थोड़ा स्वागत है. समा हो चुका जी. हां जी मेलबर्न दे ओ वाले टाइम दा जिस दा सारा नु बहुत ज्यादा इंतजार रहंदा है, क्योंकि आज है जी फ्राइडे. एंड फ्राइडे दा हुंदा जी थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, एंड थैंक गॉड इट्स फ्राइडे बिकॉज़ इट इज खुला अखाड़ा विद कृष्णा एंड नोनिया जी. डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग. वाह थैंक यू. मैं थोड़ी खांसी करना रुको.
1: वेलकम बैक ऑन रेडियो हां जी 1674 AM. जी हां तुसी सुन रहे हो रेडियो हां जी. और आज फ्राइडे, फ्राइडे दा दिन यानी के मस्तियां मस्तियां खरमस्तियां एंड डबल खरमस्तियां दा दिन, जिस दिन च असी सिर्फ और सिर्फ मस्ती मनाने, क्योंकि पूरा हफ्ता जिहड़ा असी स्ट्रेस लैके जिहड़ा असी इन्ना सारा काम करके थक पिक चुके हुंदे आ ना, ओनू वीकेंड नू लुक फॉरवर्ड करदे हुंदे आ असी. लुक फॉरवर्ड करन नू असी मनाउने हुंदे आ उस दिन नू. मनाउणा किदां हुंदा है? मनाउणा हुंदा सिर्फ और सिर्फ मस्ती दे विच. और मस्ती दे विच की हुंदा कि असी ना कुछ रूल लिखे हुंदे ने जदों छोटे हुंदे आ ना, उदों कुछ असी रूल लिखदे आ.
0: वाह.
1: और रूलां नूं असी कदे कदे फिर भुल जाने आ जिंदगी च, इन्ने के बिजी हो जाने ना. कहंदे ना कि जिदां हर चीज का एक पासवर्ड है.
0: रूल तोड़ने के लिए होते हैं नोनिया जानी.
1: सुने सुने सुने सुने जानी. आगे आगे आगे भी सुने, आगे भी सुने.
0: सॉरी सॉरी, माजरत माजरत.
1: नो नो नो, इट्स ओके, परफेक्टली ऑलराइट जानी.
0: ये
1: हर चीज का एक पासवर्ड है.
0: ओह वाह.
1: ऑलराइट. फोन का, बैंक का, ईमेल का.
0: वाह वाह.
1: तेरे भाई का बदला लेगा. रिमेम्बर बाबा का, अच्छा, दादा का.
0: बाप का, दादा का. वो बड़ा बढ़िया. ए बुढ़िया चुप कर जा.
1: हर चीज का एक पासवर्ड है. फोन का, बैंक का, ईमेल का. हमने सब याद रखे हैं,
0: सब याद रखे हैं.
1: बस पुराना पासवर्ड भूल गए.
0: वाह.
1: बस पुराना पासवर्ड भूल गए. हाँ. जिस पे कभी हमने लिखा था जो मन करेगा वही करेंगे.
0: ओए होए होए होए होए.
1: ऑलराइट. सो आज जेड़ा फ्राइडे है ना, वी विल सेलिब्रेट.
0: यस.
1: ऑलवेज, नॉट टुडे ओनली, ऑलवेज वी सेलिब्रेट दैट फ्राइडे.
0: यस.
1: ताकि जो भी असी कह रहे थे मन करूंगा असी करांगे. सो उदे च मन करने च की आजूगा कि तुसी गाने सुना सकदे हो, तुसी चुटकले सुना सकदे हो, तुसी अपनी आप बीती सुना सकदे हो. हफ्ते दे विच केड़ी बहुत सॉरी घटना बहुत वधिया थोड़े नाल हैपनिंग हुई है तुसी ओ सुना सकदे हो, तुसी कुछ भी सुना सकदे हो. पर कंडीशन सिर्फ एक ही है कि उही सुनियो सुनायो जो असी घर परिवार दे विच बह के सुन सकीए सुना सकीए, जिथे सानू ए ना कहना पवे कि न्याणियां दे कन्नां ते हथ रखो या रेडियो बंद करो, इवें दी कंडीशन ना होवे.
0: बिल्कुल.
1: जिहदे नाल किसी दा दिल ना दुखे, किसी दीआं भावनावां नूं ठेस ना पहुंचे. बस इन्नी की कंडीशन है, होर कोई बहुत ही है नहीं है. जो एक सारे परिवार दे विच असी हमेशा रख दई आ. यूनो कदे कदे असी परिवार दे विच यूनो गाली बाके गल नहीं करते है, क्योंकि इट्स अ रिस्पेक्ट टूवर्ड द फैमिली. सो उदा ही यह भी साड़ी जिहड़ी रेडियो हां जी दी फैमिली है, असी भी इन्नी एक कंडीशन यूनो कहंदे ना जी कहो ते जी कहाओ.
0: जी जी.
1: सो ओ वाला रूल है. बाकी मस्ती करन च असी पूरे मस्ती खोर ने.
0: यस वी आर वेरी मच मस्ती खोर. एंड सानू तोड़ लगी पई है मस्ती दी, सानू कॉल करो 044-717-1674 ते एंड अपनी शायरी सुनाओ, गाने सुनाओ, किसे होर दा गाना सुनाओ, किसे होर दी शायरी सुनाओ, बुझारत भी पानी है पा दो यार, कोई चक्कर वाली गल नहीं. एंड सब तो बेस्ट की होया हफ्ते दे अंदर एंड एडिंग टू द रूल ओही वाला कि दुनिया ग्रेट है, लाइफ मजे में, गेम छो मजा मा, जूस पिवानू मजा नी लाइफ, ओ सब नी. नो नो नो नो नो. एक चीज कैंट जो हफ्ते दे अंदर हुई ओ साडे नाल जरूर तुसी सांझी करनी है. जे थानू थोड़ा जिहा शायनेस फील हुंदी है तां शायनेस नू को बाय बाय. एंड मैं आज करूंगा कॉल कृष्णा एंड नोनिया जी नू.
1: यस. ए सारीयां गल्लां तों पहलां याद रखो भी आपां गंजी भी खुरकदे हुंदे.
0: यस देयर इज
1: सेगमेंट शुरू हो रिहा साडा.
0: यस.
1: जंगी
0: जंगी बेचारी वो आप है क्योंकि वो गंजी है.
1: मेरे फ्रेंड के कुत्ते का नाम जंगी है.
0: जंगी रखे बना.
1: यस.
0: बड़ा ही
1: कल मैं उन्हें खेड़ के आई मिला तो नाम मेरे मुंह से जुड़ा है जंगी.
0: जंगी नाम रखे आप
1: जी.
0: ये केड़ा वर्ल्ड वॉर टू का कुत्ता रखे आप है भाई.
1: आई डोंट नो. ही इज अ सॉसेज डॉग.
0: अच्छा सॉसेज जो जड़े लंबे जे होंदे
1: ना. हां
0: ओ यार
1: उसका नाम जंगी है. सो क्या
0: बात है.
1: गंजी खुरकू लहू कड्डू सेगमेंट ओदे विच मेरे दिमाग च कोई एक पर्सनैलिटी हुंदी है, एक कोई कोई भी एक चीज फेमस हुंदी है ते तुसी बुझनी हुंदी है थोड़े कोल 7 सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बारे दसना है पर नाम नहीं सीधा ले सकते.
0: हाँ, नाम नहीं लेना.
1: 10 तो बाद यस यू कैन.
0: ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਆਏ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ ਨੀ ਗਾਇਸ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਅੱਛਾ ਨੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਚ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੀਡੀਏਟਰ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਲੋ
1: ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਬਿੱਲਾ ਹੋ
0: ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੇਲੂ ਹਾਂ
1: ਰੇਲੂ
0: ਰੇਲੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਬੋਲਿੰਗ ਨੀ ਮਿਲਣੀ ਬੈਟਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵੀ ਛੇ ਛੇ ਬੋਲਾਂ ਯਾਰ ਨਾ ਨਾ

0: तू ही रे
1: सॉरी हरिहरन अंकल मेरे माइंड च नहीं सी।
0: किना प्यारा गाना
1: है हरिहरन, सच्चा गुड सिंगर ना।
0: आई डोंट नो ना दी आवाज जी
1: मखमली यार।
0: ओह माय गॉड, सेम थिंग आई वाज अबाउट टू से वेलवेटी।
1: आए ताली ताली ताली, क्या बात है, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक।
0: यस,
1: फिर थोड़ा मेरे नाल क्यों नहीं रलदा?
0: चलो मैं कहने लगी सी फ्लॉक ऑफ सेम बर्ड ना।
1: हां क्यों बर्ड ऑफ, हां ये भी होता है, बर्ड ऑफ सेम फ्लॉक्स फ्लाई टुगेदर,
0: बर्ड ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर।
1: हाँ बस मेरे वालों यही कुछ जी। एवरीवन प्लीज बर्ड्स को उड़ने दें।
0: यस, बर्ड्स नु उड़न दो। खुले पिंजरे, खुले पिंजरे, खुले आसमान दे विच, पिंजरे च ना रखो ना।
1: नहीं पिंजरे च रखना नहीं आपा।
0: यस, चाहे वो कुछ भी होन। और बर्ड तो याद आया है ना, गो फॉर अ वॉक अराउंड आवर स्ट्रीट ना, एंड किसी ने ना बाहर तोता रखा हुआ है। मैं इन्ने टाइम हो गया निकले निकले, कदे नहीं हुंदा। तोता निकलिया, तोते ने कॉम्प्लीमेंट किनू दिता? मेरे डॉगी नू।
1: अच्छा वाह, चलो उन्होंने भी आपस गल हो सकती है। आदमी नहीं ठेका लिया एक दूसरे ना गल करन दा। हां भी ठीक है,
0: मैं हैरान ऐसा कौन।
1: अच्छा
0: ओ, क्योंकि अगे ना थोड़ा हल्की जी बुशेस सी, बुशेस दे जिदा नहीं वरांडा हुंदा, वरांडे च रख्या होया सी पिंजरे दे विच।
1: ओके,
0: तोता किसी ने कहना है तोते हाउ आर यू।
1: ओए बल्ले आ बढ़िया सी, तुसी सारा दिन इदा गल करो प्लीज।
0: हेलो तोते हाउ आर यू। हेलो कृष्णा, क्या हाल चाल?
1: वाह क्या बात है। ओए तोते री काट ते पता किदी ज़रा आवाज लगदी पई है?
0: ककड़ू?
1: नो, मिनी माउस दी।
0: नो नो, मिनी माउस ना नहीं, मैं भी ਉਹਦੀ ਮੋਰ ਨੇਜ਼ਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਫਰਕ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਲਤਾ ਦੀਦੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਉਹਦੀ
0: ਬਹੁਤ ਨੇਜ਼ਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
1: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਸੱਚੀ।
0: ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਕਰੂਜ, ਡਾਕਟਰ ਸਕਰੂਜ ਨਾ।
1: ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕਲ
0: ਸਕਰੂਜ, ਅੰਕਲ ਸਕਰੂਜ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ।
1: ਕਾਸ਼ ਐਸੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ ਗਾਇਸ।
0: ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਕਲ ਸਕਰੂਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਰੋਕੀ ਜੀ ਐਂਡ ਤਿੱਖੀ ਜੀ।
1: ਉਹ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ।
0: ਓ ਯੈਸ, ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ,
1: ਅੰਕਲ ਸਕਰੂਜ।
0: ਆਈ ਕੈਨ ਸਿਟ ਐਂਡ ਵਾਚ ਆਲ ਦਿਸ ਕਾਰਟੂਨਸ ਹੋਲ ਡੇ।
1: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਟੂਨ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਡਿੰਗ ਮਾਈਂਡਸ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਹਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੱਬ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡੱਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚਾਰ ਹੀ ਨੇ ਆਪਸ ਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਚਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ
0: ਕਰਦਾ,
1: ਉਹਦਾ ਨਾ ਬੇਸ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹੀਰੋ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ।
0: ਟਰੂ ਟਰੂ।
1: ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੇ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣਨੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੀਰੋ ਦੀ, ਹੀਰੋ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ ਹਨਾ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਤੁਮ ਤੋ ਲੁੱਚੇ ਹੋ ਲੁੱਖੇ ਹੋ ਯੇ ਹੋ ਹਨਾ
0: ਗਵਾਰ ਹੋ, ਯੇ ਕੌਨ ਹੈ, ਯੇ ਲੁੱਚਾ ਲਫੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਕਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਔਰ ਬਾਬਾ ਕੋ ਇਸਨੇ ਖਿਲਾਇਆ ਪਿਲਾਇਆ, ਬਚਪਨ ਸੇ ਜਬ ਸੇ ਇਸੇ ਪੈਦਾ ਹੁਆ, ਇਸਨੇ ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ, ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਆ, ਤਬ ਜਾ ਕੇ ਇਸਕੀ ਮਾਂ ਇਸਕੋ ਦੋ ਗੁਣ ਦੂਧ ਦੇਤੀ ਥੀ ਜਬ।
1: बंदा रो भी रहा ना सर, तुम्हें क्या पता ये हमारे गांव का करता धरता है, इसका करके गल कर रहे इदा ही इदा ही सेम टू सेम। यार चिल करो थोड़ा,
0: ठंडे हल्के फुल्के हल्के हल्के कदम तुरदे रहो, कोई टेंशन नहीं, जिंदगी जो होना होना ही होना है।
1: हाँ, जो होना होना,
0: जो होना है वो होना है, फिर किस बात का रोना है, तो बड़ी फिर गंजी खुरको।
1: हाँ जी प्लीज खुरकाओ जी।
0: पहला क्वेश्चन आप पूछते हैं, भूलिए
1: क्या ये मर्द है
0: जी?
1: ओके, मैंने वैसे उम्मीद सी मैं क्या आज तक करेंगे। सो गाइस पहला सवाल है जी, क्या जो गंजी अपनी शुरू हो गई है जी खुरकना, इफ दिस इज द राइट वे टू गो अबाउट इट, बेचारी गंजी ने जड़ी लुको के रखी भी अपने को उन्हें प्रताड़ित कर रहे ने, उदा पहला सवाल पूछ लेता सी जी कि क्या ओह मर्द है, तो इन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल मर्द है। वेरी गुड वेरी गुड। मैं इदा करदा मैं तद तक ना साइड ते जिहड़े मैसेजां दा भार इकट्ठा होया पे ना
0: जी ओ थोड़ा
1: हड़ालो नाल हना हौला कर लैने कि सानू जतिंदर कौर जी ने भी गुड मॉर्निंग भेजी है, हैप्पी फ्राइडे, नाइस वीकेंड, ते नाल भेजिया जी कॉफी दा कप जी, धन्यवाद
0: तुहानू
1: वी, बैक कॉफी दा कप जी।
0: यार कॉफी दा कप भेजिया करो आमंड मिल्क वाला।

0: ऑफ यू आई विल कॉल इन सेकंड हाफ, ठीक है जी?
1: यस प्लीज।
0: डन हो गया जी, डन हो गया।
1: हले क्वेश्चन दो ही हुए ने,
0: क्वेश्चन दो ही हुए मेरे को ना, एक्चुअली इकट्ठे हो रहे, मैं घंटे वाला सवाल ही थानू पूछूंगा। ठीक
1: है, नहीं नहीं जेडे आ रहे हो तुसी पूछ सकदे हां।
0: अच्छा चलो ठीक है भाई। बाकी की कहते हैं 190 कहते कि नोनिया जी तुसी लाल जी नू धर्मेंद्र ना बनाओ, सारी देओल फैमिली ने लाल जी नू कटीस कटीस कुटना यार।
1: कटीस कटीस कुटना,
0: कटीस कटीस, क्योंकि
1: नो नो
0: तुसी तुसी फिर भी बच जाना, क्योंकि सनी औरतों पे हाथ नहीं उठाता है। क्या बात है।
1: नहीं तुसी तुसी उन्हां दी फेसबुक जाके देखो एक पुरानी पिक्चर, ही लुक्स लाइक अ डिट्टो धर्मेंद्र दी कॉपी।
0: नहीं है ते है गल बात है लाल जी दी।
1: व्हाट डू यू थिंक ऑफ आर लाल जी?
0: मैं कह रहा कमाल है, बवाल है, इको ही है वो बसंत लाल है। ते अगला सवाल है कि यह जड़ा बंदा ना प्रधान जड़ा अपना, कि यह हजे भी काम कर रहा है फिल्मा च?
1: नो।
0: अच्छा एक काम नहीं कर रहा जी फिल्मा दे अंदर। तीन सवाल हो गए।
1: yes.
0: ते मतलब कि फिर जसवाल साहब थोड़ा सवाल नहीं पूछ दे क्योंकि ओदा हुन कोई पॉइंट नहीं है। ते जी क्या ओहो महाराष्ट्र तो है?
1: देखो सारे जिन्ने भी फिल्म इंडस्ट्री है वो बेस्ड होते हैं, पर बॉर्न एंड ब्रॉट अप नहीं है।
0: बॉर्न एंड ब्रॉट अप मराठी नहीं है जी।
1: जी
0: ते अपना किन्ने हो गए जी? चार सवाल,
1: चार
0: सवाल हो गए जी। नॉन मराठी एक्टर,
1: एक्टर यस,
0: जेड़ा मेल है उस बारे सानू दसो कि वो कौन है, नहीं तो मैं नवी कंबोजी दा सवाल पूछ
1: रहा हूं। नहीं नहीं नहीं नहीं करा ना ना ना, कौन है नो? शहन शहनशाह दा गाना नहीं है?
0: शहन नहीं, मैंने नहीं पता। अंधेरी रातों में रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते, नाम है शहनशाह। हाय अमृत बहन जी पूछ रहे हैं।
1: मुझे नहीं पता था आपने बच्चे पैदा किए हैं।
0: हाय ओ हां अभी नहीं किया गाइस। Guys,
1: सवेरे कहते चार बच्चे ने और कहते रिश्ते में हम थोड़े बाप होते हैं। अरे यार, अरे क्या, अरे क्या बात करते हो? अरे
0: माफ कीजिएगा, माजरत माजरत। सुखविंदर बहन जी पूछ रही हैं कि कौन कौन से आंसर आ गए हैं गंजी के लिए। मैं कदी सोचा नहीं सगा कि मैं सेंटेंस कदी इस तरह पढ़ांगा लाइव अंदर, विच आंसर यू गॉट फॉर गंजी। वाओ। सो सुखविंदर जी सानू पता है कि जी एक बॉलीवुड का एक्टर है
1: जी,
0: ते मेल है
1: जी,
0: ते ओ महाराष्ट्र तो नहीं है
1: जेब,
0: ते ओ हुन फिल्मा च काम भी नहीं करदा।
1: ये
0: डन हो गया,
1: ये चार क्वेश्चन हो चुके हैं,
0: चार क्वेश्चन हो गया। बॉलीवुड मेल एक्टर जो फिल्मा च हाल फिलहाल काम नहीं कर रहा।
1: यप।
0: ते वाह क्या बात है। अगो मेनू जवाब है बोलो बोलो कौन है वो? ओ तुसी
1: दस्सो। हां नहीं नहीं गाना बोलो बोलो कौन।
0: अच्छा,
1: है
0: गाना सर। ओके मैं क्या यार मेरे नाल एंटी खेडना शुरू हो गए लोकी। तो जी 439 जी कहंदे ने कि उसकी उम्र 60 साल तो ऊपर है। कवल जी जी पूछ रहे हैं
1: जी।
0: जी 60 तो ऊपर है जी, जी। चलो डन हो गया जी। 60 साल तो वड्डी उम्र दा एक बॉलीवुड दा एक्टर।
1: पांच हो गए
0: मतलब कि 1970s 80s दा होएगा।
1: या या
0: फिर तो एक ही है बंदा जो मेरे माइंड च आ रहा है।
1: कौन
0: है मेरे माइंड च? पता कौन आ रहा है?
1: कौन आ रहा
0: है? मैं बोलूंगा नहीं ना फिर लोगों को इजी हो जाएगा।
1: यस यस यस,
0: अपन लोगों को मौका देने हैं भाई, ठीक है ना।
1: यस
0: जो है सो है। इधरों सुखदीप सिंह घुमन साहब कहते हैं कि चढ़दी उम्रे जदों खून है उबाले मारदा बंदा फिरे नफे नुकसान नू कदे नहीं विचारदा। चार दिनां दी हवा विच उडारी है माड़ी जवानी विच बाली या तो चुकनी है माड़ी। एब्सोल्युटली राइट। मापिया दे कहे नू जो समझदे ने बोझ पुठियां कम्मां दे विच रहिंदे जिन्हां नू खोज वैलियां ते नशियां दे दी लग जावे माड़ी यारी जवानी विच बाली या तो चुकनी है माड़ी। हंकार विच आके जो कुदरत दे कानून नू तोड़ दे चंगे राहां वल जाण तो अपना मुख ने मोड़ दे सलाखां पिछे रुल जावेगी जिंदगी प्यारी जवानी विच बाली अत चुकनी है माड़ी। समा लंघे तो फिर इंसान नू पैंदा है पछताउणा बीत्या वेला फिर कदे मुड़ के नहीं आउणा। कहिंदा घुम्मण नेकी दे राह चल के ही मिलांगे मिलेगी वड्याई नहीं तां कीते करम ही तुहाडे तुर तक बन जाएंगे परछाई। बहुत नाइस जी,
1: वेरी वेरी नाइस कमेंट जी,
0: थैंक यू। क्या बात है। तो थोड़े लिए जी अगला सवाल है जी, दो सवाल आ गए। सो सवाल नंबर 6वां है कि क्या वो अपना मशहूर है ड्यू टू ही इज वेरी गुड डांसर?
1: ਨੋ
0: ਨਹੀਂ ਡਾਂਸਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ ਦੇਸ਼ਬੰਧੂ ਬਾਰਦਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੈਪੀ ਫਰਾਈਡੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਭੇਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ

0: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो देओ मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स। थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: विक्टोरिया वासियों, क्या आपको गैस पर खाना बनाना पसंद है? कड़ाके की ठंड वाली रात में तुरंत गर्म हो जाने वाला घर, जब भी आपको जरूरत हो पूरे परिवार के लिए लगातार मिलने वाला गर्म पानी, तो जब तक आप इसका आनंद ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि स्टेट लेबर इन सब पर बैन लगाने की योजना बना रही है। बैन केरल से कहिए कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको बताए कि आपको अपने ही घर में खाना कैसे बनाना है, घर गर्म कैसे रखना है या नहाना कैसे है, पर जाकर गैस सब्स्टिट्यूशन रोड मैप को नहीं कहें। डेविड डेविस MP द्वारा अधिकृत सदर मेट्रोपॉलिटन रीजन के सदस्य लेवल 1-670 चैपल स्ट्रीट साउथ 11 daviddavis.com।
3: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4-5 दिनां विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स। अपनी बिजनेस नू चमकाओ, कॉल 1300-151616 quicksignage.com.au।
4: ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੋਟੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਰੋਮਾਂਚਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ, ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਓਨਾ ਹੀ ਨਿਖੜਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿਜ਼ਮ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਚਿਜ਼ਮ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚਿਜ਼ਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਚਿਜ਼ਮ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ RTO 0260।
5: ਕਿੱਥੇ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ?
6: ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਜੂ, ਪਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੀਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਕਿਵੇਂ?
5: ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਟੀਮ, ਆਲ ਮੇਜਰ ਐਂਡ ਮਾਈਨਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਵਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਵਰਕ ਐਂਡ ਪੇਂਟ, ਫ੍ਰੀ ਲੋਨ ਕਾਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਕੰਮ ਤੇ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0383-85-7048 ਤੇ। ਸਿੰਘ ਸਮੈਸ਼ ਰਿਪੇਅਰ, 8 ਗ੍ਰੇਸ ਵੇ, ਰੇਵਨ ਹਾਲ।
0: ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਆਓ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਂ, ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਕਿੱਲਡ ਵੀਜ਼ਾ, ਐਮਪਲੋਇਰ ਸਪੋਂਸਰਡ ਵੀਜ਼ਾ, ਡਾਮਾ, ਪੇਰੈਂਟ, ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ 0490-054-596। ਗਰੇਵਾਲ ਵੀਜ਼ਾ solutions.com.au ਤੇ ਜਾਓ। ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੀਏ।
7: Attention, ladies and gentlemen, this is your captain. Thoadi flights, Melbourne to India ya Pakistan, Sydney to India ya Pakistan, kithe vi ja sakdi hai.
0: Attention, please. Dil kehnda hai, kar jana hai. Flight search karke thak gaye. Switch karo, Hi-Fi Travel Stay, your local travel agency. Rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book karni hai? Aaj hi call karo 1300-533-311 te. Ya online book karo hi-fi-travels.com.au te. Sona chahida?
8: Parosa chahida hai.
0: Quality te buyback vi chahida. Chale aao Delhi Jewelers, Stockland, Point Cook vikhe. Jithe buy carat gold, classy silver, dazzling diamonds, ate gemstones. Custom jewelry thwaade order te ready. Purana sona buyback and exchange turant. Cash chahida? Gold loan easy and safe. Repair, bullion buying, selling, sab ek hi jagah te oh vi wajib rate te. Delhi Jewelers, 310/2 Main Street, Point Cook. Call 0493-536-042.
9: Mera desh Incredible India Trugnina vich apne har bhen bhra nu unna de desh da swad ate masale ethe de reha hai. Tusi ethe Indian masale, dalan, grocery da har saman wajib rate te le sakde ho. Pao cosmetic di har item vi, nale ghar vich hove koi function ya tyohar, mithai di ethe milegi tuhanu वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लिए नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ पारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनेना विच।
8: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
10: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप। टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
11: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
12: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।

ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस। शर्ता लागू।

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: की चाहिदा, ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा, मिल जुगा। सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशन, ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490054596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस .com.au ते जाओ। आओ थोड़ा कोई हल करिए।
3: मैनू अपनी नवी दुकान ले प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिनां विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालां तो साइनेज लीडर्स। अपनी बिजनेस नू चमकाओ, कॉल 1300-151616, quicksignage.com.au।
4: Attention ladies and gentlemen, this is your captain. ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟਸ ਮੈਲਬਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
0: ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਪਲੀਜ਼, ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਲਾਈਟ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਸਵਿਚ ਕਰੋ ਹਾਈ ਫਾਈ ਟਰੈਵਲਸ ਤੇ। ਯੂਅਰ ਲੋਕਲ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਰੇਟਡ 4.9 ਸਟਾਰ ਔਨ ਗੂਗਲ। ਬੁੱਕ ਨਾਓ ਪੇ ਲੇਟਰ। ਫਲਾਈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 1300-533-311 ਤੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਕਰੋ highfivetravels.com.au ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।

0: वाह वाह वाह, क्या बात है। जत्थों मैं लंगा उत्ते खाली राह नखरो,
1: इको फोन उत्ते भजे दे।
0: वाह क्या बात है। एक मेंटल हेल्थ पेशेंट ले भी लोग इस तरह ही करते कि यार माड़ा राह छड़ दो, यदा पता नहीं की करे की ना करे। मैनू गाइस जोक्स हो रहा जी, एनी ओजला फैंस इन द हाउस, असी भी फैन है जी, फैन है जी, फैन है जी, फैन है जी। तो यह थानू एक होर आप गाना सुनाता जी ओजले की नवी ईपी का। तो अज असी गलबात जी करांगे साढ़े विशेषज्ञ बलकीरत दे नाल।
1: What's that, bro?
0: गलबात है, गलबात है कि मैं पढ़ रहा सीगा जी एक रिपोर्ट, ओदे ते आपां थोड़ा जिहा पिछले हफ्ते कीता सीगा हां जी मेलबर्न ते गलबात।
1: हां जी, कीड़ी रिपोर्ट पढ़दी थी?
0: ओ सीगी हिल्डा दी रिपोर्ट। उस तो बाद जी आरबीए वाला जिहड़ा कांड होया, सारेयां नूं पता है जी, इंटरेस्ट रेट वध गए। ठीक है जी। फिर जी अज जो पेनू करते पे रिकॉर्ड, तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सरचार्ज ऑन योर एफ्ट पॉस एंड मास्टर वीज़ा कार्ड यूज़ करन ते ओहो बंद कर दिते ने एंथनी अल्बनीज़ी की सरकार ने। ये भी सबनू पता, पर ओदा खामियाजा यह होएगा कि शायद जिस चीज़ का तुसी लेट सपोज जो तुसी उस कॉफ़ी का जिहदा 5-60, 5-70 दे रहे सीगे, हुण ओह 6.5-7 दी सिद्धे मालक नूं करनी पई, क्योंकि स्मॉल बिजनेस नूं ये खर्चा आप बेयर करना पैना है। सो यह सब चीज़ां दे मुद्दे नज़र आंदे। हिल्डा दी रिपोर्ट भी जिहड़ी सी उस बारे भी दस दिए कि ऑस्ट्रेलियन लोग जो 18 तो 29 दे उम्र

0: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: साडे समाज विच अध्यापक बहुत महत्वपूर्ण हन। ओह बहुत सारे लोकां दे जीवन नूं प्रेरित करदे, हौसला अफजाई करदे अते असल प्रभाव पाउंदे हन। इत्थे विक्टोरिया विच वख-वख सभ्याचारक पिछोकड़ां तों अध्यापकां दा होना महत्वपूर्ण है अते इह विद्यार्थियां दी सिक्ख्या नूं लाभ पहुंचा सकदा है। जे तुसी जां तुहाडा कोई जानकार इत्थे विक्टोरिया विच अध्यापक बनना चाहुंदा है तां इत्थे कई सारे अध्यापन वाले कोर्स उपलब्ध हन। तुसी हाई स्कूल विच अध्यापक बनन विच तुहाडी मदद करन लई वजीफे लई भी योग हो सकदे हो। अध्यापन वाले करियर विच कीवें जाना है इस बारे वधेरे जानकारी प्राप्त करन लई टीच दी फ्यूचर दी खोज करो। विक्टोरिया दी सरकार मेलबॉर्न द्वारा अधिकारित।

0: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, भरोसे दी निशानी।
1: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
2: हुन टेंशन छड्डो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
3: फिर लवाइए किथों?
2: सन करंट वालिया कोलों। 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
4: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते।
0: चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। तुहाड़ी गड्डी कोई भी होवे, उनू चलाउन लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाड़ी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
5: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
6: की होया,
5: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
6: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नु, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉय स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
5: या 90-77-97-33
6: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
5: याद रखो 9077-9733।
6: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
5: हर कदम तुहाडे नाल।
7: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहुंदे हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वो भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनां च भी तुहाडे अपनियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
8: विक्टोरिया वासियों, क्या आपको गैस पर खाना बनाना पसंद है? कड़ाके की ठंड वाली रात में तुरंत गर्म हो जाने वाला घर, जब भी आपको जरूरत हो पूरे परिवार के लिए लगातार मिलने वाला गर्म पानी, तो जब तक आप इसका आनंद ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि स्टेट लेबर इन सब पर बैन लगाने की योजना बना रही है। बैन केरल से कहिए कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको बताए कि आपको अपने ही घर में खाना कैसे बनाना है, घर गर्म कैसे रखना है या नहाना कैसे है, पर जाकर गैस सब्सटीट्यूशन रोड मैप को नहीं कहें। डेविड डेविस MP द्वारा अधिकृत सदर मेट्रोपॉलिटन रीजन के सदस्य, लेवल 1, 670 चैपल स्ट्रीट, साउथ 11, davidavis.com।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: अथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल
2: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा मिल जुगा सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक परोसे योगना जो स्टडी वीजा स्किल्ड वीजा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा डामा पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील कर देने हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नू 0490-054-596 गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ आओ थोड़ा कोई हल करिए
3: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है तुसी एथे इंडियन मसाले दालां ग्रोसरी दा हर सामान वाजिब रेट ते ले सकदे हो पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394 दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच

0: फ्लाइट्स मेलबर्न टू इंडिया या पाकिस्तान, सिडनी टू इंडिया या पाकिस्तान कितने भी जा सकती है।
1: अटेंशन प्लीज, दिल कहता है कार जाना है, फ्लाइट सर्च करके थक गए, स्विच करो हाई फाई ट्रेवल से, योर लोकल ट्रेवल एजेंसी रेटेड 4.9 स्टार ऑन गूगल। बुक नाउ पे लेटर। फ्लाइट बुक करनी है आज ही कॉल करो 1300-533-311 ते या ऑनलाइन बुक करो highfivetravels.com.au ते।
2: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
3: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हॉर्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है कि प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।

0: DJ समी।
1: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 डॉनस्टेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।
2: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी।

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: Radio. We are back again.

0: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
1: की होया
0: इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं।
1: काका जी टेंशन छड़ो फोन चको कॉल करो वीवाई इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉयर स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
0: या 90-77-93-33
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तो आडे नाल
2: हां जी ओए

पेपर आना पर पेपर च कख ना आना, सारी सारी रात बह के पर्चियां बनाना, एग्जामिनर नाल कोई जाके जुगाड़ जा लाउना, फिर घर दी गड्डी पलाउना।

जे को मन जाने मन कोय, मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की सुध, मन्ने मोचोटा ने खा, मन्ने जाम के साथ न जाय। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय, मन्ने

वक्त न पाया का दिया जे लिखन ले कुरान हितवार ना जोगी जान रुत महा ना कोई जा करता सिर ठीको साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सलाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखन सब को आख है एक दू एक सियाना वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जा का होवे नानक देखो आपो जाने अगे गया न सो है पाताला पाताल लख आकाशा आकाश ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सेंस अठारा कहन कतेबा असलू एक तात लेखा हो।

सेती माल तन कीड़ी तुल न होनी जे तिस मनो न विसरै अंत न सिफती कह न अंत अंत न करना दे न अंत अंत न वे

ना पाए जाए। ए अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए। वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए। जेवड आप जाने आप, नानक नदरी करमी दात। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए। केते मंग

आद अनिल अनाथ अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तीन चेले परवान एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावे तिवे चलावे जिव होवे फरमान ओ वेखे ओना नदर ना आवे बहुता ए वडान आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए पंडार जोग चुपाया सोए कावार कर कर वेख सिर जनहार नानक सचे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी पौ लख होए लख वीस लख लख गेड़ा आखिया एक नाम जगदीश ए तरह पथ पवड़िया चढ़िया होए अकीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाईए कूड़ी कूड़ै फीस आखन जोर चुपै नहीं जोर जोर न मंगन दे न जोर जोर न जीवन मर न जोर जोर न राज माल मनसोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिति वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती था प्रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापे जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का खो करम केते पवन पानी बैसंतर केते कान महेश केते ब्रह्मे काट कड़िया रूप रंग के वेश केतिया करम भूमि मेर केते केते तूप देश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवेश केते देव दानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरिंद केतिया सुरती सेव केते नानक अंतनांत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद बनोद कोट आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै कारत कड़ी है बहुत अनूप कां किया गल्ला कथिया ना जाए जे को कह पिछे पछताए तिथै कड़ी है सुरत मत मन बुद्ध तिथै कड़ी है सुरा सिदा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर न कोई होर तिथै जोध महामलसूर तिन मैं राम रिया भरपूर तिथै सीतो सीता मैं मामा कां के रूप न कथने जाए ना ओ मरे ना ठागे जाए जिन कह राम वसै मन माहे तिथै भगत वसे के लोए करे आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसे नंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै।

आप श्रीमुख वाग्पाद सहित स्वी छपे छो प्रसाद चक्र चैनी हर वर्ण जात हर पात नय रूप रंग हर रेख पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाशम तो कह जाय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जाय तिर भवन में सुर नर सुर नेत नेत बंतरन कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अभेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजय नमस्तंग अभंजय नमस्तंग अडामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अभीते नमस्तंग अभाये नमस्तंग अडाये नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगाजे नमस्तंग गंजे नमस्तंग भंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अबारे नमस्तंग सुएक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अभूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्भर्मे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्भेषे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाये नमस्तंग अबाये नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग संजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अभंगे नमस्तंग अगमे नमस्तरमे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराशे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अभेशे नमस्तंग नितामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभू नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्तु देवे नमस्तंग अभेवे नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्वे नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्तु द्याले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्व दंदे नमो सत वंदे नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्भाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तत रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखं नमो सर्व पोखं नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चात्री चांतो प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अभू है अलेख है अभेक है अनाम है अकाम है अदय है अभय है अजीत है अभीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अभूत है अभर्ण है अगंज है अभंज है अजूज है अजंज है अमीक है रफीक है अदंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अला है अजा है अनंत है महंत है अलीक है निरश्रीक है निर्लंब है असंभ है

ते अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परमंगी परमाते समस्ति प्रभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सवरंग परम रूपे नमो जोग जोगे सवरंग परम सिद्धे नमो राज राजे सवरंग परम बिरदे नमो शस्त्रपाने नमो अस्त्रवाने नमो ब्रह्म ज्ञाता नमो लोकमाता वेखी अवरमी अभोगी अभुक्ते नमो जोग जोगे सवरंग परम जुगते नमो नित नारायण गुगुर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साहंग नमो भूप भूपे नमो दान दाने नमो मान मानंग नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्ट नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चिदानंद सर्व प्रणासी अनूपे अरूपे समस्तल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बिरद करदा अधो उर्द अर्दंग अगा उग हरता परंग परम परमेश्वरंग प्रोच पालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयारंग अछेती अपेदी अनामंग अकामंग समस्तो पराजी समस्तस्तामंग तेरा जोर चातुरी छंद जलय हैं थलय हैं अभीत हैं अभय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अवेश हैं प्रियंग पुरा छंद गादे अबादे आनंदी स्वरूपे नमो सब माने समस्ति निदाने नमस्तंग निनाथे नमस्तंग परमाते नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अभंजे नमस्तंग अकाले नमस्तंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साय नमो माय माय नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो सर्वतानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व मंजंत्रंग नमो सर्वदृशंग नमो सर्वोत्कृष्टंग नमो सर्वरंगे त्रिभंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखजे अभजे समस्तंग प्रसजे कृपालंग स्वरूपे कुकर्मंग पनासी सदा सर्वदारिद सिद्धंग निवासी चार परिचान तो प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे आलख जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग अलख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुक्ता सर्वंग जुगता सर्वंग देवंग सर्वंग पेवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रुहाल छंद तो प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त अजोन पुरख अपार सर्व मंत्र मान देव अभेद आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपुनकाल जत तत्र विराज ही अवधूत रूप रसाल नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूर्त अजोन आद से देश अरना पेश जाकर रूप रेख नराग जात्र तात्र दिशा विशा हुए फैलो नराग नाम काम बहिन पेख ताम हो न जाए सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानताए एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव न जानी जय बेद हरक तेव रूप रंग न जात पासो जानी कह जेव तात मात न जात जाकर जन्म मर्म ही चक्र बकर फिरे चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखे जग जाप ही जय जाप आद देव अनाद मूर्त थाप सब जय थाप परम रूप पुनीत मूर्त पूर्ण पुरख अपार सर्व विश्व रस्यो सुजंभव गण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख देश धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेक अंग राग न रंग जाके जात पात न नाम गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुकदाय काम आव रूप अमीक अनुस्तुत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत अंगहीन अभांग अनात्म एक पुरख अपार सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रतपाल सर्वगंता सर्व हंता सर्व ते अनपे सर्व शास्त्र जानी जय रूप रंग रेख परम वेद पुराण जाके नेत पाकत नेत कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवे ही वो चित मदभार छंद तो प्रसाद गुण गानुदार महिमा अपार आसान अभंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस्दिन अना

लान कान अनुभूत अंग अभाव अंगत में तपार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मित गत अखंड आलछे कंस आदि श्रेतरम सर्वां वर्णांडिये अंडंड भांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चात्री छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आभिज वेश के आगाज कर्म के आभंज भरम के आभिज लोक के आदित शोक के अवधूत वर्ण के बेपूत करण के राजम प्रवाह के धर्मंग तुजा है के आशोक वर्ण के सर्वा अवर्ण के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव है के आप अभेव है के चक्रंग बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा के रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज ग्रहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र मानिय के सर्वत्र दानिय के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाव के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानीय के सर्वत्र जापिय के सर्वत्र थापिय के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वंग कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहेब कलाम के हुसन वजू है तमामल रजू है हमेशा सलाम सलीख मुदाम गनी बुल शिकस्ते गरी बुल पुलस्ते मुलंदर मुकाने जमीन जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुलखिराज है निरकस स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रभा है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्वाह स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सो सर्वान रागे त्रिपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथुल परवास है निरकत परवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत परवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वहंता सर्वगंता सर्वख्याता सर्वज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चंद तो प्रसाद नमो नरगनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंगम भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमितो अमेक है सदैव परवाह है अजय है अजा है भागवती छंद तो प्रसाद के जाहिर जहूर है
ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਮੇਸ਼ਲ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਕਿ ਕਾਮਲ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਕਿ ਰੋਜੀ ਦਹੰਦ ਹੈ, ਕਿ ਰਾਜਕ ਰਹੰਦ ਹੈ, ਕਰੀਮੁਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਸਨ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਗਨੀਮੁਲ ਖਰਾਜ ਹੈ, ਗਰੀਬੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ, ਹਰੀਫੁਲ ਸ਼ਕਨ ਹੈ, ਹਿਰਾਸਲ ਫਕਨ ਹੈ, ਕਲੰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਅਗੰਜਲ ਗਨੀਮ ਹੈ, ਰਜਾਇਕ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਸੁਮਸਤਲ ਜੁਬਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਕਮ ਪਰਨਾਸ ਹੈ, ਬਿਸਤਲ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਸਰਬਰ ਗਵਨ ਹੈ, ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਲ ਰਵਨ ਹੈ, ਤਮਾਮਲ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਪਰੰਗ ਪਰੰਗ ਈਸ ਹੈ, ਸਮਸਤਲ ਅਦੀਸ ਹੈ, ਅਦੇਸਲ ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਭੇਸਲ ਅਭੇਖ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜੁਮਾ ਹੈ, ਅਮੀ ਕੁਨੁਮਾ ਹੈ, ਕਰੀਮਲ ਕੁਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਜੁਰ ਜਮਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਅਚਲੰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਮਿੱਤੋ ਸੁਭਾਸ ਹੈ, ਕਿ ਅਜਬ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਿ

गुणगान मुदाम हर बार अगंज हर नर प्रभंज अन गण प्रणाम मन मन सनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनाश मन मन प्रगास गुणगान प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनपौ अनाश त्रित तर तुरास आजान वा एक सदा ओंकार आद कथनी अनाद खल।

अंठन अबार आडीठ तरम अत ठीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना संतो प्रसाद करनाले अर काले कलखंडल है मैं मंडल है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है तृत के तरण है जग के करण है मनमानीय है जग जानीय है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करुणाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करुणाकर है अजपाजप है अतपातव है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करुणाकृत है अकृताकृता है तरणीतृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलकायक है विश्वम्बर है करुणालय है निर्म नायक है सर्वपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रवतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा में सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है प्रियांग प्रिया छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम शंग शांत रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार लंके नमो आसे आसे नमो बांग बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी दृकाले अनंगी कामे एक अश्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख पख अकाल दयाल अलेख अभेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमूनि न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे प्रियांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रनासे अगंजन अनामे सुमस्तल निवासे निर्कामंग बभूते सुमस्तन स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयंबं सुमं सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा

0: श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे। वीर अपार बड़े बड़े आर अवतार इसार की धार बछैया, तोर देश बुलंद बवासन माते के जान के मान मलैया, गाड़े गड़ान के तोरण हर सुबातन ही चकचार लवैया, साहेब श्री सबको सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया, दानव देव फिनन निशाचर पोत पवेख पवान जपेंगे, जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे, पुन प्रताप अनबार जय तुन पापन के बहु पुंज खपेंगे, सात समूह प्रसन्न फिरे जग सत्र सब अब लोग जपेंगे, मानव इंद्र गजिंद नरातम जोन त्रलोक को राज करेंगे, कोट स्नान गजात गदान अनेक स्वंबर साज भरेंगे, ब्रह्म हेश्वर विष्णु सची पत अंत बसे जम्फास भरेंगे, जे नर श्री पत के प्रस है भगते नर फेर न दे तरेंगे, कां भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो भगत ध्यान लगायो, नहात फिरयो लिए सात समुद्रन लोग गयो पर लोग गवायो, बास कियो बखियान सु बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो, साच कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो, कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो, कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो, को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो, कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो, कूर क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो।
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुठ सबे तुम कावो, आप हाथ दे मोय बचावो सुखी वसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिया, सब बैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आशा, और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ, जो बर चाहो सो तुम ते पाओ, सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उबरिया मरण काल का त्रास नवरिया, पूजो सदा हमारे पच्छा सिरियास तुझो करियो रच्छा, राख लियो मोय राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता, काल पाए ब्रह्मा बपरा काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा, जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो, जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताए हमारा, जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी, शिवकन को शिवगुण सुख दियो सतन को पलमो बद कियो, काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत, टीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतम दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने, जब उदकर करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा, जब आकर्ष करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ, देते बदन सृष्ट सब थारे आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब ही तेरे निरालम जानत बेद भेद अल आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत पेदा।

महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंत नहीं पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तो तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पुपा। अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रजदीनी। कहो फूर राजा हर बैठा, कहो सिमट पयो संकर्या कैठा। सगरी सृष्ट दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव। आवरक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रन काता। जे आज तो तब सरनी परे, दिन के दुष्ट दुख है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है। रक्षा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहन हर हो।

पवित संगत सुभाइया कैदे पवित सुनदे पवित से पवित जिनी मन वसाया कह नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया।

रतन जित मन लागा ए होआ समाओ सब सेती मन मिलिया सच्चै लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है।

तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंत दिन हर

माया अगन सावी को जई करता है खेल लचाया जांत सपाना ता जमया परिवार भला पाया लिव छुड़की लगी तरसना माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पौ दूजा लाया कह नानक।

0: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Sada Ali Khan in Urda Teer.
1: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
2: Desh bhakti to yaad aa gayi.
3: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
0: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
4: Ye border chal rahi hai.
0: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
5: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
6: Ne bete ke liye justice chahiye.
7: Mujhe justice nahi, badla chahiye.
5: Drishyam the conclusion. Starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawar and many more.
8: This bar khatra kab kaise aur kahan se aayega, batana mushkil hai.
5: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
8: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. Aakhri hissa baki hai.
5: Overseas release by Zee Studios.
9: Aa kithe vaj gayi teri gaddi?
10: Gaddi ta theek ho ju. इंश्योरेंस वाले नू लीगल वाले नू इत्थे परदेश विच समझाऊंगा किवें
9: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वाले ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथोराइज काम ते फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते सिंक स्मैश रिपेयर 8 ग्रेस वे रेवन हॉल
11: टुट पैने इंग्लिश ने देखो अपनी नेड़ले सिनेमा घरां दे विच 25 सितंबर 2026 नू
12: है पुत पहला मैनू अंग्रेजी बोल के दिखा
13: आई हैव मेनी काओ बट फेवरेट बेस्ट काओ लाली ही हैव 4 लेग 2 ईयर 2 आई वेरी गुड शी वेरी फास्ट काओ
14: हुण मेरी जठाणी नू पता लगू कि साडे घरे भी अंग्रेजी आ
15: तुसी अरदास भी अंग्रेजी च करदे हो
16: ना पुत इंसान नु परमात्मा नाल गल करन ले किसी जुबान दी लोड़ थोड़ी पैंदी है
17: आप सुन रहे हैं पुण्य दर्शन

0: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Sara Ali Khan in Urda Teer.
1: Ek Pakistani jaasoos Hindustan jayega.
2: Desh bhakti to yaad aa gayi.
3: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
0: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
4: Ye border chal rahi hai.
0: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai from October 9th at cinemas near you.
5: Star Studio 18 and Panorama Studios production present.
6: Ne bete ke liye justice chahiye.
7: Mujhe justice nahi, badla chahiye.
5: Drishyam the conclusion. Starring Ajay Devgan, Tabu, Shreya Saran, Jaydeep Alawar and many more.
8: Is baar khatra kab kaise aur kahan se aayega batana mushkil hai.
5: The end we've been waiting for. Drishyam the conclusion in cinema 2nd October.
8: Kyunki kahani abhi khatam nahi hui hai. Aakhri hissa baki hai.
5: Overseas release by Zee Studios.
9: बिजनेस चलाना आसान नहीं पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने एटीओ ऑडिट्स टैक्स डिस्प्यूट्स एटीओ डेट्स बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा आज ही विजिट करो sebipartners.au सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स

0: प्योर न्यूजीलैंड पीदा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दुध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हॉर्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है कि प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
1: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड़ ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।
1: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com।
3: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
4: हां जी रेडियो।

0: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहते हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिन च भी तुहाडे अपनियां दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
1: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
2: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
3: हां जी रेडियो।
4: सुच्चा ते कुकर दोनों भगवत यार, दोनों फौज भर्ती होने वास्ते गए। सुच्चा सिंह भर्ती हो गया पर कुकर पिंड आ गया। पिंड आके ओने सुच्चा सिंह दी परजाई बीरो ते मैली अख रख ली। बीरो ते कुकर नु मिलाउण वाला एक पाक सिंह नाम दा बंदा सी। जदों इह आपस च मिलन लगे ता बीरो दे घरवाले नारायण सिंह ने बीरो नु रोकिया, पर बीरो ना हटी। ता नारायण सिंह ने अपने छोटे भरा सुच्चा सिंह नु एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी विच सारी दर्द कहानी लिख दित्ती। पढ़ के चिट्ठी सूरमा दंद पी के रह गया। फौज चो नौ कटा के पिंड आ वड़िया। पिंड आके उन्हें सियाने ते सुचजे बंदियां दे हाथ कुकर नु कई स्नेहे घले, पर कुकर ने सुच्चा सिंह दे किसे स्नेहे दी कोई परवाह ना कीती। पिंड विच एक वार एक गवंतरी आ गया, खाड़ा लग्या होया। सुच्चा सिंह बैठा गौण सुनदा, कुकर दी पार्टी दे विचों किसे ने सिंगड़ी छेड़ दिती। सुच्चा सिंह नु गुस्सा आ गया, ओ हुण कुंडियां दे सिंह फस गए ने, कोई बड़े ने खाणी नित्रूगी। सुन जरा गौर नाल ओथे।

0: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494763700 और व्हाट्सएप 2Fold Lending।
1: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो, आ गया ZJ स्टोन मेसन, तुहाडे घर नु बनाए एकदम क्लासी। असि बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
2: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
3: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालिया नू, लीगल वालिया नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवे?
2: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंह स्मैश रिपेयर वालिया ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल, वर्क एंड पेंट फ्री, लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंह स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।

0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ। सोना चाहिदा,
1: परोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी, पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत, कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ वी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
2: विक्टोरिया वासियों, क्या आपको गैस पर खाना बनाना पसंद है? कड़ाके की ठंड वाली रात में तुरंत गर्म हो जाने वाला घर, जब भी आपको जरूरत हो पूरे परिवार के लिए लगातार मिलने वाला गर्म पानी, तो जब तक आप इसका आनंद ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि स्टेट लेबर इन सब पर बैन लगाने की योजना बना रही है। बैन केरल से कहिए कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको बताए कि आपको अपने ही घर में खाना कैसे बनाना है, घर गर्म कैसे रखना है या नहाना कैसे है, पर जाकर गैस सब्स्टिट्यूशन रोड मैप को नहीं कहें। डेविड डेविस MP द्वारा अधिकृत सदर्न मेट्रोपॉलिटन रीजन के सदस्य, लेवल 1-670 चैपल स्ट्रीट साउथ 11, daviddevis.com.au।
0: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
3: टेंशन निरी टेंशन
4: की होया,
3: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
4: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो VY इमिग्रेशन नु, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉय स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
3: या 90-77-97-33
4: या ईमेल info@vyimmigration.com.au।
3: याद रखो 9077-9733।
4: VY इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
3: हर कदम तो आड़े नाल।
5: हाँ जी हाँ जी।